किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आनन जाना वेसा किन्ही ग्रह

पंडित सा सत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे

गुरु प्यारी सत्संग जी कीर्तन की इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी, कीर्तन करद हुई बेंत गलतियां की खिमा बख्श देनी जी। आओ जी हूँ साढ़े अति सत्कार योग ज्ञानी निशान सिंह जी के ढाडी जत्थे वालों ढाडी वारा अते गुरु इतिहास सरवण करना करिए जी। आप सब जी ने रचना पवित्र करनी, असीस बख्शनी, गज के फतेह गजाउनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

जिन पूरी बंत बनाई तू पारो स्वामी मोरा एहो पुन्न पदार्थ तेरा जन नानक एक त्याया सर

यहो पुण्य पदार्थ तीरा जन नानक एक तियाया सर्व फला पुण्य पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम।

सहाय सलोक। जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तो न छुटे, निकट न जायो दूर सलोक। मोहल्ला पंजवा।

भगवान बेटा प्रभु शिवाय त्याग शरम कर दीवे और रत्न जन्म का हुई उदार और हर सिमर प्राणियाद हर इनके पवन छूट नारी सिमरत सा सतबीर विचार हर की पद कर मन लाई मन बंश तनान फल पाई सांगना चार तीरा तना तुम क्या लपटावे हम मूर्ख मारा सतमीत कुटा बर बनताय नती कह हु तुम कम सनाथ राज रंग मय विस्तार अंति कह हु कम छुटकार आस हस्ती राथ स्वर झूठा डम फ झूठ पा सर जिंदगी देह पूजा ना विघन ना विसाना अनुपस्था न गुर कुमात तुम लिह ए आने भगत बिना बटु बेस्यान हर की भगत करह मन बीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राख मन वाहि जन्म जन्म के गिर बिख जाहि आप जप अवरा नाम जप वह सुनत कहत रहत गत पा वह सार पूत साधार गुनाऊ सहज सुभाय नान गुन गाय गुन गावत दीर्घ उत्तर समैड गुन सजा होमे बिख फैल हुहि अचंत बसा सुखनाल सास ग्रास नाम समायल छाड़ सियन सकदि मना सत्संग पावे सच तन हर पूंजी संज करवे हरि हर सकदर का जयकार सर्व निरंतर को देखो नानक जाक मस्तक लिखे को जा भी को सलाही एक सिमरे कुमार आही एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जा भी को भगवान दे को एक एक हर आप पूरन रब ग्रह प्रभु या बन के विस्तार एक देव एक आराध प्राशत गाय मान तन अंतर एक प्रभु राता गुरु प्रसाद नानक की कजाता सलोक फिरत फिरत प्रभु आया पर आता शरण आय नानक प्रभु बेंती अपने भगत लाय अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा दीव हर नाम साध जन की मांग तूर पार ब्रह्म शरद है पूर सदा सदा प्रभु की गुण गाव सा सा प्रभु तुम हित आव चरण कमल सिंह लाग प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक कोट एक वन है नानक मांग नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महा सुख हुई हर पाव बिरला को जिन चाखे से जन त्रिवता ने पूर्ण पुरख नहीं डुला नहीं सुबर परि प्रेम रह रंग उपजाय चाऊ साध के संग परि स्नान सब त्याग अंतर प्रकाश आनंद लिवला गुड़ पागी जप अभरा सोए नानक नाम रति सुखो सेवक मन सा पूरी पर साधु गुरु तीन निर्मल मात लय जान को प्रभु हुई दया सेवक न सदन हर बंधन काल मुख जान पाया जनम वरण दुख प्रम गया सुपन सरदा सा पूरी राव रह साध संग जो जिसका साध लिया मिलाय नानक भक्ति नाम समाय सुखम बेसराय जे काल न पाना सुखम बेसराय जे किया जाना सुखम बेसराय जन साहब की शर दिया सुखम बेसराय जे जीवन जिया सुखम बेसराय जे अगर महाराख गुरु प्रसाद को बेला लाख है सुखम बेसराय जे बिखति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरा दाती है बुझ है प्रभु अपना नानक जानते है साजन संत करो ये हुका मान त्याग जब हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव आव जब अब रह नाम जो पाव भगत पाए दर्ग संसार बिन भगति तन हो शीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़त जात पाए विश्राम सकल दुख का अवतनास नानक नाम जप हुकुंता सुभज प्रीत प्रेम रह चाउ मंत्र अंतर ही स्वयं नियत्र दरस सुख हो मन बिकसा साध चरण तो पग जना का मंत्र रंग बिरला को उपाव संगिक बस दीज कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाय नानक रह सर्व समय प्रभक संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जनक प्राण आधार जो जो जप सो पुनीत भगत पाई लाभ मन हीत हम निर्गुनी नीच अजा नानक तुम सर्व पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाई निमुख हर के गुण गाय अन कराज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का पर संगीत रसना जापति हर हर नीत पली सो करण शोभा तरवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंत सात संग प्रवधि हुन वै सर्व सुख नान प्रकार श्लोक सर्वन निर्गुण रंकार सोन समाधि आप अपन किया नानका भी फिर जा अष्टपद जब अकार हुका स्नान दृष्टि तब आपन तब कहती होता जब तारिया अपन सोन समाध तब वैर विरोध केश संकुमात जब इसका वरण चिहन न जाब तू तब हर सो कह के सब व्याप्त जब अपन आप पार ब्रह्मता मोह कहा के सोत परम अपन खीरा वर्ती जा नान करने आना दूजा जा हुवत प्रभु की वरत अन्यता बंद मुक्त कहो कहो तब बंद मुक्त कहो किस कहो गानी जबी कह हरगम अपार तव नर स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्राप सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाई जब आप अपनी जोत तर तब कौन निडर कौन का डर अपन चल दाव करने हर नानु ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपनासन तह जन्म मरण कहू कह विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोई।

निर्मलता की करम सबति ऊचता की शोभा बनी नानक गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम थे आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम थे आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद प्रसाद चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भे को कह ना सकत कहे अचल मूर्तन भौ प्रकाश मतोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गिण जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन करम नाम वर्ण सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काय नमस्तंग जाय नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग डाहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग दारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुएके नमस्तंग नेके नमस्तंग पूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग पूते नमस्तंग लोके नमस्तंग शोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग भंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्त रम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग मजबे नमस्तस्त अजबे आदेशंग आदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवे नमस्तंग पेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वंगे नमो काल काले नमस्तस्त्याले नमस्तंग वर्णे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारं नमस्तंग कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत अबंधे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग नन्ते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अदेह हैं अपेय हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निधान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अभूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अक्रम हैं अप्रम हैं अजीत हैं अपीत हैं अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਆਈਏ। ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਿਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਨੂੰ ਪੁਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੁਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧ ਨਿਆਵ ਸੀਸਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੂੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤੀ ਹਜ ਰਾਜ ਜਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਿਆ ਦਮਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਵ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਬਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖ ਹੈ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੁ ਸਾਜ ਸਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੇਂਗੇ, ਤੋਰ ਰੀਰ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤਿਮ ਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੇਂਗੇ, ਬੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਰਿਆਰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਾਇਆ ਤੋਰ ਦੇ ਸਮਲੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤਿ ਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਗਾਡੇ ਗਡਾਣ ਕੀ ਤੋੜਨ ਹਰਸੂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਕਚਾਰ ਲਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੁ ਏਕ ਦਵਿਆ, ਦਾਨ ਦੇ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਂਜ ਪੈਂਗੇ, ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪਤ ਪੈਂਗੇ, ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪੁਨ ਬਾੜ ਜਾ ਤੁਨ ਪਾਪੁਨ ਕਹਿ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੇ ਜਗ ਸਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਚ ਪੈਂਗੇ, ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਨ ਰਾਤ ਭਜੋਂਤਰ ਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗੇ। ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾ ਜਗਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੇਂਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਧ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ, ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪੱਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੇਂਗੇ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ ਬੈਠ ਭਗਤਿਆਂ ਲਗਾਇਓ। ਨਹਾਤ ਫਿਰ ਉਲੀਏ ਸਾ ਸਮੁੰਦਰਨ ਪਲੋਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕਿਉ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਿਖਿਓ ਹਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨਿਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵ ਹੋ, ਆਪ ਹਾ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵ ਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਇੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੈਂ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰਨਾ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਾ ਦੇ ਮੁਝੇ ਅਭਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਵਰੀਐ। ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜੋ ਕਰਿਹੋ ਰੱਛਾ, ਰਾਖ ਵਿਮੋਏ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ, ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸਕੰਤਾ, ਕਾਲ ਪਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸੁਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਭ ਕੀ ਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂਥੀ ਓ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ, ਜਮਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ।
आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुसी ही को हमारी सकल प्रजाजने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरण को पलमो वध कियो। कट कट के अंतर की जान, तो भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, साब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एके की पीर पछाने। कट कट के पटपट की जाने, जब उद कर्क करा करतारा। प्रजा तर तब देह अपारा, जब आकर्क करत हूँ कब हूँ। तुम मैं मृत देह तर सब हूँ। जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बुझ उचारे। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मोड़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कह सदा शिव, निरंकार का चीनत नेह पेवा। पाप निबुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह बिसदा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कही भूपा। अंडज जे रज सेत जखीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कहूँ फूल सा जाह वह बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर इकैठा। सिगरी सिष्ट दिखाए अचंग पवा, जुगाद स्वरूप सुयंग भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्जित उठवत तपाता, सकल मले चकरो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै। मरे पुरख जोन पग परे, ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ता है सब काला, दुष्ट टरें तत्काला। कृपा दुष्टन जय न हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ वह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उभारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आपा दे लह उभारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे, सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाह सुरस ना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन्नर के रह, हो जो जाकी एक बार चाव पई को कह चाव पई। संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस पण तीन कह जय। भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर तत् द्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया वाए गह जब ते तुमरे, तब ते कुं आखतरे नहीं आन्यो। राम रहीं पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहयो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु, मैं पाया सतगुरुता पाया। सह सेती मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार प्रियां। शब्द गावन आईयां सब दोता गावो, हरी केरा मंजनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो, हरनाले हरनाल रहो। तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना। सब नांगलना समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो, हर नाले साचे साहिबा। क्या नाही कर तेरह, करता तेरह सब किच है। जिस दे सो पावे, सदा सिपसाला तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या। वाजे शब्द कनेरे,
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, करशान सुखमन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह वडियाइयां, कहे नानक सुनहो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दवस कीते काल कुंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुजन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे, साची लवै बिन देनी माणी, देनी माणी लवै वाजो, क्या करे विचारिया, तुध बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। ऐस नोहर थाव नाही सब लाख सवारिया, कह नानक लिवै बाजो क्या करे विचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद, गुरु ते जानिया जानिया आनंद, सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा कर भी कट्टे ज्ञान अंजन सारे, अंदर जिन का मुँह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक यो आनंद है आनंद, गुर ते जानिया बाबा, जिस तू दे सोई जन पावै, पावे ता सो जन दे, जिसन होर क्या करे बेचारिया, एक भरम भूलै फिरै दह दिसिक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे, आवो संत प्यारो अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाई है, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनै पाई है, हुक्म मनो गुरु के रागाओ सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो कथो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, एह माया मुन जिते तो परम पुलाया, माया तो मुनि तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसह विटो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, सा तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा काम मुलै ना कीचै जित अंत पछोताई है, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान हे, जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण, आखेता वेखे सब तू है जिन जग तू पाया, कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुध उपाय कवेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनु आप तुठा जन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चालना निराली, भगता केरी बिख मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आपत जा हर वासना समाणी, कहे नानक साल भगतां जुग हो जुग निराली, ज्यों तू चलाए हे तिव चलहे स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे, जिसनों कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों भावै तिवै चलावे, इहो सुहिला सब सुहावा सबदो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया, इहो तिनकै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया, एक फिरह कनेरह करहें गल्लां गल्ली किने ना पाया, कहे नानक सबद सुहिला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्या पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटंब सहत स्यों पवित संग सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै विण सहजे सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलिन है कि संजम धोता जाए, मन धोवो सब लागो हर स्यों रहो चित लाए, कहे नान गुरु प्रसादी सहज उपजे एह सहसा जाए,
जिहो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जिहो ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया एह तसना वड्डा रोग लगा मरण मनहो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यों बेतालिया कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जिहो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जिहो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सानमुख होवै ता सानमुख सिख कोई जेहुरै गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्मै समाले। आप छड सदा रह परणै गुरबिन अवर न जाणै कोय कहे नानक सुनहो संतो सो सिख सनमुख होय। जे को गुरते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थै कोई पुछो बे किया जाए। अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुर के प्यारो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिन को नदर कर्म होवै हृदय तना संबाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो एह सच्ची वाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करहे रसना कहया कछु ना जाणी। चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो आसमाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकत आप उपाय के करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुख शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वै एक स्यों दिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दी तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बज तत्ते सार न जानी तीं गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहाणी। गुर कृपा ते सेजन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनो अंधन हर लिव लागे जागत रहन विहाणी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये मनो क्यों विसारिये ए वडदाता जे अग्न मह आहार पहुँचावे ओसनों कहो पौ ना सकी जिसनों अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालीए कहे नानके उड़दाता सो क्यों मनो विसारीए। जैसी अग्न उदर मैं तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जेही करते खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जमया परिवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है। मुलना पाया जाए मुलना पाया जाए किसै विटहो रह लोक विरलाए ऐसा सतगुरु जे मिलै तिसनो सिर सौंपिए विचहो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हरे आप अमुल कह भागत न के नानका जिन हर पल लै पाए। हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपहो जिहो लाह खटहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलया जिन हरे आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वण जारा। ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कित जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिलै जिस आए कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मने आए।

0: सचा तेरा हुक्म सचा फरमान, सचा तेरा कर्म सचा निशान, सचे तुदे अखे लख करोड़, सचे सब तान सचे सब जोर, सची तेरी सिफत सची सलाह, सची तेरी कुदरत सचे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच, जो मर जमे सो कच निकच, महला पहला।
1: बड़ी बेजमटना बड़ी बड़ी सचने, बड़ी बड़ी जाने ला, बड़ी बड़ी बुझ सब पाओ, बड़ी बड़ी जो पुछना दाद, बड़ी